0: रिमुदी 98-51-32-21-37
1: जुगु सेवा केन्द्र जुगु 98-51-322-141
0: चरीकोट सेवा केन्द्र चरीकोट 98-51-32-21-34
1: काठमाडौँ सेवा केन्द्र काठमाडौँ 98-51-322-147
0: भेषबहादुर मिचार व्यवस्थापक जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बैतिसर गाउँपालिका 5 महिना पोखरी दोलखा।

0: नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: ओए दौड़ी ना,

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।